मद सामीन, बच्चे जब भी कभी कोई बुरा काम, कोई ऐसा काम जो नापसंदीदा हो करें, तो उनको प्यार और मोहब्बत के साथ और इलादा लोगों के बच्चों के सामने नहीं बल्कि इलादा कमरे में उनको समझाना चाहिए। और जब कोई अच्छा काम करें तो बच्चों को इनाम और शाबाश देनी चाहिए। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरीक़े से बचपन ही से जब बच्चे की ज़बान चले, बात करने के काबिल हो, तो उसकी ज़बान पर अल्लाह ताला का नाम लाना चाहिए और उसको कलमाए तय्यबा पढ़ाना चाहिए। किसी नेक साले मुत्तकी सहीउल अकीदा आलम के पास उस बच्चे को कुरान पाक की तालीम देनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब बच्चे कुरान पाक पढ़ लें तो फिर हमेशा कुरान पाक को पढ़ते रहना चाहिए। सुबह या शाम थोड़ा थोड़ा कुरान पाक ज़रूर बच्चों से पढ़वाया करें। अक्सर माँ बाप जब बच्चे कुरान पाक ख़त्म कर लेते हैं, बड़ा फंक्शन किया आमीन के ही, और उसके बाद कुरान पाक को गिलाफ में लपेट कर रख दिया जाता है और बच्चे कभी उसको पढ़ते नहीं। इसका असर ये पड़ता है कि चंद माह और सालों के बाद वो बच्चे कुरान पाक भूल जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वैसे भी जिस घर में बच्चे बच्चियां कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला रिज़क में बरकतें अता फरमाता है। बच्चों को हमेशा बचपन ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की मोहब्बत, आपकी ताज़ीम, आपका अदब बच्चों को सिखाना चाहिए। साथ साथ अहले बैत, सहाबा कराम, औलिया कराम और उलमा जो बड़े बुज़ुर्ग हों, उनका अदब करने की बच्चों को तालीम और तरबियत देनी चाहिए।

एक सवाल ये भी किया जाता है, क्या जो लोग दुनिया से फौत हो जाएं, अंबिया या औलियाए कराम, तो क्या उन बुज़ुर्गों का वसीला भी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर सकते हैं? मौजूद सामईन, इस पर भी तमाम उम्मत के उलमा का इत्तेफाक है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के महबूब बंदों से तवस्सल और वसीला जायज़ है, ख्वा वो दुनियावी ज़िंदगी में हों या बरज़खी यानी कब्र की ज़िंदगी की तरफ मुंतकिल हो चुके हों। अल्लाह ताला के जो महबूब बंदे हैं अहले बरज़ख, अल्लाह ताला की बारगाह में वो हाज़िर हैं, और जो उनकी तरफ मुतवज्जे हो वो भी हुसूले मकसद के सिलसिले में उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, याद रखें, पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो लोग अल्लाह ताला की राह में शहीद होते हैं, शहादत का मर्तबा पाते हैं, और जो मर्तबाए वलायत पर फ़ायज़ होते हैं, और जो मर्तबाए सदाकत पर फ़ायज़ हुए, या वो नफूसे कुदसिया जो अम्बिया और रसूल अल्लाह ताला ने जिनको ये मर्तबा अता फ़रमाया, ये रिसालत भी, नबुवत भी, सदाकत भी, और वलायत भी, और शहादत भी, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के इनामात हैं। दुनिया के अंदर कोई बंदा किसी को जब इनाम देता है तो दुनिया का टाइम गुजरने के साथ साथ वो जो इनाम है वो दुनिया तक ही रहता है, मगर जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया और उनको नबुवत अता फरमाई, रिसालत अता फरमाई, और सदाकत अता फरमाई, शहादत अता फरमाई, विलायत अता फरमाई, ये तमाम अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदे हैं। और ये जो अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदे होते हैं, ये इस दुनिया में भी अल्लाह ताला के महबूब होते हैं, कब्र में, आलम बरज़ख में भी अल्लाह ताला के महबूब होते हैं, और क़यामत में भी ये अल्लाह के महबूब होंगे, और क़यामत के बाद भी जब ये जन्नत में जाएंगे तो ये अल्लाह ताला के महबूब और इनाम याफ्ता बंदे होंगे। ये कहीं भी हों, चाहे दुनिया में हों, चाहे आलम बरज़ख में हों, चाहे क़यामत के दिन होंगे, अल्लाह ताला इन पर खुसूसी फ़ज़लो करम फरमाता है और इनकी शफ़ाअत और इनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदों से इस दुनिया में भी वसीला जायज़ है, आलम बरज़ख़ यानी कब्र में भी उनका वसीला जायज़ है, क़यामत के दिन भी वो लोगों की जो इस्तेआनत मदद हैं वो करेंगे, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और उसकी अता से वो अपने अपने जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग होंगे उनकी वो क़यामत के दिन भी शफ़ाअत करेंगे।